0: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.

0: Τώρα μαζί με τη Δάρτα που γεγίζει από τα σαπάρ σε τέσσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με τη μόχο κορτά national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε δασταραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γιλεύε χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिलावी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने বলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানসেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব স্যার ওদরতে মিলাবিজি।

पर लगी जी और दिल नवेश कॉस्मेटिक्स उम्र हूँ प्रोडक्ट जी हर कॉस्मेटिक और मेडिकल स्टोर के जन स्टोर के दोस्तों पास नहीं सर मिले जी कचर तक ब्याह हम नवे लवी जी बिल्कुल कंपनी हेल्पलाइन नंबर शुक्र देवन ने तुझे जरूर कॉल करवाली से कंपनी हेल्पलाइन नंबर दे 0342 311 22 बयान बने कॉल जरूर करवाई ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾਦਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਦੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਕਲਾ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਜ਼ੀਦ ਨੋਨ ਹਾਵਰਡ ਸਰਾਕਸ਼ਲੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਸਰੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਕੋ ਚੇ ਨਨ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਸਟ ਰੋਂ ਚੁਕਮ ਦੇਖੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਗਲੀ ਦੇਸ਼ ਮਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਔਰ ਸਰ ਸਰ ਐਮ ਐਸ ਡੀ ਚੁਕਮ ਦਾ ਹੁਆ ਸੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ बिल्कुल प्रोग्राम के बेंच लगे सर लगी जी प्रोग्राम के चुकम दुआ स्टरों दिखाना आगा हाँ बिल्कुल प्रोग्राम के सर मौजूद ही तो बिल्कुल रसी फॉलश की शान दे दासे सो मिनटे बार ठीक सर चकला दे बिल्कुल रेडी जी खजी ना बिल्कुल प्रोग्राम के बिल्कुल गपशप लगी जी तो हाँ कॉल कवली सी दे प्रोग्राम की शिरकत कवली सी कॉल कॉल ओवर डायल कवल से 0322 98 98 999 जी बिल्कुल 0322 98 98 999 बने कॉल कवली से प्रोग्राम के बिल्कुल बरहराज शिरकत कवली से मैसेज हाँ कवली से और दिन अलावा कॉल हाँ कवली से हाँ जी बिल्कुल जुकम दुआ सरों दी अगर सर मौजूद हो गए नमक एम एस डी पत्र फिर से प्रोग्राम की उल्लस की शांति एम एस डी सर जुकम दी गप शो वाले गिर जी हाँ जी मस्जिद सर मौजूद है और मस्जिद आयशमा कैसे पाकिस्तान प्रोग्राम की हर करी अस्सलाम वालेकुम जी जी जी जी अच्छा जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल ठीक सी

दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 करक आपके हर लम्हे।

भाई सर के मैं चाहता टिटे नदी सर के मैं चाहता टिटे नदी से गड़े वड़े चार एकड़म जोरी लरमा ओ सीधा मोहब्बत मोहताज रंदा मयन पयो यम खा ख्याल द

कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ी एक आवाज़, रेडियो अमन 88.4 तरक हर वक्त आपके साथ। दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो, रेडियो अमन 88.4 करक आपके हर लम्हे।

जरूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ी एक आवाज़, रेडियो अमन 88.4 तरक हर वक्त आपके साथ।

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

आशा जी आखिरी शेबे आओ यही छे परुनपुर जमाओ नंद अबल शो यो सड़े परुनपुर जमाओ नंद अबल शो यो सड़े कमाल ये कृष्पा पुष्पा बदल शो यो सड़े अरमान ये द मंजल वो बवरी वो पारमान अरमान ये द मंजल वो बवरी वो पारमान हैरानियम पशावल ल मंजल शो यो सड़े और नजका पसरन मर वलाड़ा है इस नई खबर नजका पसरन मर वलाड़ा है इस नई खबर लता न खो चापेर लका मलमल शो यो सड़े परुनपुर जमाओ नंद बल शो यो सड़े कमाल यो उकड़ोष्पा पश्पा बदल शो यो सड़े अरमान ये द मंजल वो बवरी वो पारमान हैरान यम पशावले ला मंजल शो यो सड़े नजका पसरन मर वलाड़ा हिस नई खबर लता न खो चापेर लका मलमल वो यो सड़े लडेरू कमलुनु चे वो पाते नीमा ख्वाब लडेरू कमलुनु चे वो पाते नीमा ख्वाब लडेरू निम गड़त्याओ मुकमल शुयो सड़े।